0: इन वन मंथ टाइम, तो अब बजाय पैसे के वो या तवाफ में आ गया, तो वो तो फिर गलत है। तो कर्ज न हो, हरज न हो, मरज न हो। तो अगर आपको भी इस वक्त कोई कर्ज हरज मरज न हो तो फिर आप
1: अपनी गाड़ी है सभी आती है
0: बस ठीक है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे।
1: और आप नमरे की सोहबत हो भी हरम शरीफ को 1,00,000 साल की बेरेवास है हरम शरीफ में।
0: अल्लाह ताला आपके इस हुस्न जन को कबूल कर ले। मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा मुझे समझते हैं तो अल्लाह ताला मुझे इससे अच्छा बना दे। अल्लाह ताला कबूल कर ले, कबूल कर ले। वन डे आई वाज सिटिंग मगरिब टाइम हियर एंड फ्रॉम द टॉप आई सॉ लाइक व्हाइट क्लाउड्स कमिंग डाउन एंड देन मेकिंग राउंड एंड राउंड ऑन द हेड्स ऑफ द पीपल। तो मैंने अपनी आंख यूं की, आई थिंक सो इज आई सीइंग रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट, इन केस ही टेकिंग लोबान एंड गोइंग राउंड। जुमेरात को लोबान ले जाती। सो अगेन आई लुक, बिल्कुल सफेद बादल राइट डाउन ऑन द हेड्स ऑफ द पीपल गोइंग राउंड एंड राउंड। दूसरे दिन भी फिर मगरिब के बाद देखा। तीसरे दिन मैंने एक शख्स से जिक्र किया, एक आलिम थे यहाँ पर, मैंने उनसे जिक्र किया कि ये मैं 2 दिन से देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि शायद अब तुम ना देखो, इसलिए कि तुम देख रहे थे, देखते रहते। बहरहाल तीसरे दिन फिर नजर नहीं आया। तो मैं सोच रहा था कि वो क्या है, तो वो क्या था, कुछ नहीं होती था। ये कि पता नहीं कौन सा वलीउल्लाह के कोई कुतुब के कोई गौस या कोई अब्दाल में से कोई तवाफ कर रहा था, तो अल्लाह ताला ने दिखला दिया कि देखो ऐसे लोग जब तवाफ करते हैं तो फरिश्ते उसके ऊपर पर बिछाते हैं, ताकि हम जब तवाफ में जाए तो हम तसव्वुर से जाए कि कोई खेल नहीं है, फरिश्तों के साये में है, हम अल्लाह ताला की रहमत के साये में है। शेर हो अल्लाह ताला रहमत है। छोटे बच्चे हैं उनके लिए खेल है, वो तो अलग बात है। छोटे बच्चे हैं तवाफ करते हैं, अल्लाह ताला उनको नेक बना दे। लेकिन हम तो जो है इसको तसव्वुर करें कि अल्लाह का घर है, इसको शाही दरबार है। अगर बादशाह के दरबार में कोई इधर उधर हरकतें करे तो क्या करेगा बादशाह, उसको एक थप्पड़ देके निकाल देगा। सो वी आर अंडर द शीट। मोहम्मद माल इज इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस। सो आई टोल्ड यू आई एम डूइंग द सेम बिजनेस टू, ही कंस्ट्रक्ट्स बिल्डिंग्स, आई एम कंस्ट्रक्टिंग हार्ट्स। The material of that building is sand, stone, tiles, paint. That is what you use. And for the construction of hearts, you need taqwa, you need shukr, sabr, zuhud, qanaat, iman, yaqeen. Now all those things, that builds up the heart. The more of taqwa, the more beautification of that building. The more taqwa and tawakkul and yaqeen, the more the beautification and designing and decoration of that building takes place, of the heart. Until that heart becomes such, ke shaho ke saro par taj gira se dard sa aksar rehta hai, aur ahle wafa ke seeno mein ek noor ka darya behta hai. So that the people build nice house and they say they want a little bit of stream and fountain and lake. Yeah, Allah Ta'ala, after this person builds his heart up with tawakkul and yaqeen and taqwa, Allah Ta'ala opens up ocean of noor inside. Rivers, lakes, oceans, all flow. And he enjoys those waves. Nahi khatm hoti hai mauje musalsal, mere bahre gham ka kinara nahi. Like how the waves go on, on and on. Like that in their hearts, the waves of Allah Ta'ala go on and on and on. Rakhiya, family. سلام کیجو کیجو دوست تو
2: Now don't throw all the seeds around here.
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد

खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यार।

काश आंखों में तुझे रख लूं। जन्नत है तू जन्नत है सरकार दो आलम की। या रहीम या करीम, चलो इजाजत, जो जमीन सीते जो

बैठेगा चैन से अगर काम के क्या रहेंगे पर गो न निकल सके मगर पिंजरे में फड़फड़ाए जा ज़र्बे किसी के नाम की दिल पे यूं ही लगाए जा गो न मिले जवाब कुछ दर यूं ही खटखटाए जा खोले वो या न खोले दर उस पे हो क्यों तेरी नजर तू तो बस अपने

उस पे हो क्यों तेरी नजर, तू तो बस अपना काम कर, यानी सदा लगाए जा। वी आर द सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह ताला, वी आर ए स्लेव्स, आवर जॉब इज टू डू व्हाट अल्लाह ताला हैज ऑर्डर्ड अस टू डू। कीप टैपिंग एट हिज डोर, वेदर ही ओपन्स और डज नॉट ओपन, व्हाई यू डू वी लुक एट दैट। We must go on tapping, and when the person keeps tapping at the door of one who is Kareem, then when the door opens, then this person will be flooded with the bounties of that Kareem. May Allah tabaraka wa ta'ala give us the tawfiq of making amal. Allah Allah kaisa pyara naam hai, aashiqon ka meena aur jaam hai. अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है।